संत एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत कारिकेश्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आरती ठाकुर ने।

आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं तादात सांदेकर।

संत तुकाराम की ये भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया है मनोहर सबनेस और सहकारी ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: सरिगम गारिगम
1: निधव मग धव मग पमग रिस रिग मप धनी सरिगम ग
0: सरिगम गारिज निज पद निरि निधव मप सरिगम गारिगम
1: सरिगम गारिज निज पद निरि निधव मप सरिगम गारिगम
0: निधप मग धप मग पमग

0: लिसन टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय श्री अयप्पया हलगलीमठ, राग ललत, ख्याल विलंबित एक ताल, रैन का सपना, धृत तीन ताल, भवंदा यरदा भोबना।
1: अब आप सुनेंगे श्री अयप्पया हलगलीमठ का गायन, राग ललत, ख्याल विलंबित एक ताल, रैन का सपना, धृत तीन ताल, भुवंदा यरंदा भुवना।

0: You were listening to vocal recital by Shri Ayyappaya Halgali Mutt. He was accompanied on tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and harmonium by Shri Shukru Saab Mulla. Continuing the concert, now listen to vocal recital by Shrimati Neela M. Kodli. Rag, Miyaa Ki Todi, Vilambit Teen Taal, Sab Ni Sab.
1: आप सुन रहे थे श्री अय्यप्पया हलगली मठ का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर, हारमोनियम पर श्री शुक्रु साहब का साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे श्रीमती नीला एम कोडली का गायन, राग मियाँ की तोड़ी, ख्याल विलंबित तीन ताल, सबनी सब, नी सब।

0: You were listening to vocal recital by Shrimati Neelayam Kodli. She was accompanied on tabla by Shri Allam Prabhu Kol and on harmonium by Shri D. Kumar Das. This program was contributed by Akashvani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे श्रीमती नीला यम कोडली का हिंदुस्तानी गायन. आपके साथ तबले पर श्री अलम प्रभु कड़कोड और हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा 24x7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक पर पेश किया गया.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन. कलाकार हैं पल्लव बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शिवनाथ भट्टाचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन. कलाकार हैं पल्लव बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन फर्स्ट टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग यामिनी बिलावल. आवर आर्टिस्ट इज पल्लव बंदोपाध्याय. Accompanying our artist on the tabla is Shibnath Bhattacharya. Listen now to the rag Yamini Bilawal on the violin. Our artist Pallab Bandyopadhyay.

0: अभी आप राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पल्लव बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शिवनाथ भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग तोड़ी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं पंकज मिश्रा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ईमान सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं पंकज मिश्रा।
1: You were listening to a violin recital in the rag Yamini Bilawal. Our artist was Pallob Bandopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Shibnath Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sarangi recital. Listen to the sarangi in the rag Todi. Our artist is Pankaj Mishra. Accompanying him on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to the sarangi in the rag Todi. Our artist, Pankaj Mishra.

0: अभी आप राग तोड़ी पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंकज मिश्रा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ईमान सरकार। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सारंगी रिसाइटल इन द राग टोरी। आवर आर्टिस्ट वॉज पंकज मिश्रा। Accompanying him on the tabla was Iman Sarkar. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं विदुषी ज्योत्सना भोळे के गायन से। प्रस्तुत है राग अहिर भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है रखिया मारा अमलारा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है जिया पिया मिलन को चाहे। आपको हारमोनियम पर संगति दे रहे हैं बाय माटे, तबले पर है सूर्यकांत गोखले और सारंगी पर है मधुकर खडिलकर। सुनते हैं विदुषी ज्योत्सना भोळे का गायन राग अहिर भैरव।

हम सुन रहे थे राग अहिर भैरव, कलाकार थी विदुषी ज्योत्सना भोड़े। आपको संगति दे रहे थे हारमोनियम पर बाल माटे, तबले पर सूर्यकांत गोखले और सारंगी पर मधुकर खडिलकर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत है विदुषी किशोरी आमुनकर का गायन राग बहादुरी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, ख्याल के बोल है

ए महादेव पार्वतीपति। आपको हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं बबन राव आठले और तबले पर है गोपाल वाड़ेकर। सुनते हैं राग बहादुरी तोड़ी, कलाकार विदुषी किशोरी आमोणकर।

हम सुन रहे थे विदुषी किशोरी आमोणकर का गायन राग बहादुरी तोड़ी। आपको हारमोनियम पर संगति दे रहे थे बबन राव आठले और तबले पर थे गोपाल वाडेकर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की प्रस्तुति थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं, प्रातः समय श्याम सुंदर को रूप निहारत. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Abhay Narayan Malik. First listen to Rag Ahir Bhairav. The alap is followed by Dhrupad, which is said to Chautal. The words are Pratah Samay Shyam Sundar Ko Roop Niharat. He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग तोड़। बोल हैं परी आली री। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित अभय नारायण मल्लिक। नाउ लिसन टू राग तोड़ी। द आलाप इज फॉलोड बाय धमार। द वर्ड्स आर परी आली री। He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय पंडित अभय नारायण मलिक। ही वाज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, यह रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आपसी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है तबला वादन। आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं विकास पुरंदरे का तबले पर बजाया हुआ ताल तीन ताल। आप साथ हारमोनियम पर है उमेश पुरोहित।

दीना कद कद्दी कद दागिन धाक दी नदी घन तकड़ा तीन तीन नाना।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे विकास पुरंदरे का तबले पर बजाया हुआ ताल तीन ताल। तबला वादन के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विनायक फाटक का तबले पर बजाया हुआ ताल मत ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रशांत राजवाड़े और वायलिन पर है सुरेश गुजर। सुनते हैं ताल मत ताल, कलाकार विनायक फाटक।

धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धगन धगतिना धग

Dagger,

जीती गति कन तान धा दि दि दि तागि दि दि धा गे दी गे गे गे देर गि दि द द तान दि दि दि तागि दि दि धागि दि नगि दि कद दि दि धागि दि धागि दि नगि कद गति कन धागि दि कन धागि दि कन धा कद गति कन धागि दि कन धागि दि कन धा कद गति कन धा।

मत्तताल। आपके साथ हारमोनियम पर थे प्रशांत राजवाड़े, वायलिन पर थे सुरेश गुजर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विहाग में ख्याल गायन. आज की कलाकार हैं सुलेखा गुप्तू. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती. तो लीजिए प्रस्तुत है राग विहाग में ख्याल, कलाकार सुलेखा गुप्तू.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Vocal Recital. Listen first to a khayal in the rag Bihag. Our artist is Sulekha Guptu. Accompanying our artist on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen now to the rag Bihag. Our artist is Sulekha Guptu.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिहाग में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी सुलेखा गुप्तू। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये मिश्र पीलू ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी संयुक्ता दास। संयुक्ता दास अपने गायन का समापन पीलू दादरा से कर रही हैं। तो ये सुनते हैं ये पीलू दादरा, कलाकार संयुक्ता दास।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Mishra Pilu Thumri, followed by a Pilu Dadra by our artist Sanjukta Das. Accompanying her on the tabla was Arindam Chakraborty. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: Bulletin. This is Akashvani. Good evening, listeners. Welcome to Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy.
1: Sri M.V. Subbarayadu aur Srimati M. Jarajakshi ke putra Sri MSN Murthy Sangeet ke pariwesh mein hi pale bade hain. आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
0: श्री एमएसएन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगन अर्ली। हिज मदर श्रीमती एम जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट। रिकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री एमएसएन मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि Sri NCH Krishnamacharyulu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture.

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। He is accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the mridangam and Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam. Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Karhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण

भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश। मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश पर। और इसमें हम शामिल करते हैं आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स को शामिल करके। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें अपने ईमेल्स भेजने हैं। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता दूं, ipradiodelhi@gmail.com। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से आप ही के पसंदीदा गीत के साथ।

इस गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय जी ने।

श्रोताओ तो इसी गीत के साथ आगे चलते हैं अपने और फरमाइशी गीतों की तरफ, लेकिन पहले लेते हैं आपके ईमेल्स जो कि आया है हमारे पास। शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष के एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गुंजन सलोकार, राजू माथे जो हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है विजय महोबिया जी का, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से कविता महोबिया और पेंटर बाबू जी के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है शिव मंदिर चौक अर्जुनपुर से शिवानी कुमारी सिन्हा जी का, जो कि सुन रही है कार्यक्रम प्रियंका कुमारी सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी सिन्हा के साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और टुक टुक भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर और परी जिसका नाम है वो भी हमारा कार्यक्रम, छोटी छोटी प्यारी बिटिया भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद बारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशप अब्बासी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ ही सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज में हमारे पास आए हैं चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि आया है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे चलते हैं अगले प्यारे से आप ही के फरमाइशी गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म तीसरी कसम से, और आवाज थी, आप तो जानते ही होंगे आवाज किसकी थी, आवाज थी मुकेश जी की। और इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि मजनू का टीला से आया है कमल बालूजा जी का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सुहाने गीत गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा जी, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहुजा के साथ कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे पास मैसेज आया है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का। साथ ही सादिया भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे प्यारे श्रोताओं का। अगला मैसेज हमारे पास आया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, जो कि शिक्षिका हैं, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विमला अनेजा जी और सतीश अनेजा जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पदमपुरा जिला श्री

गंगानगर राजस्थान से मिहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगला मैसेज हमारे पास नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान तायडे मलकापुर से, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा ग्राम सालिया खेड़ी जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी जी का आया है, साथी में गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं और बहुत सारे ईमेल आपके शामिल करूं, पहले चलते हैं आप ही के एक फरमाइशी गीत की तरफ।

गीत हमने लिया था फिल्म दोस्ती से, आवाज मोहम्मद रफी जी की थी। इसी के साथ चलते हैं अगले ईमेल की तरफ जो कि हमारे पास आया है। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमारे पास मैसेज आया है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से हमारे पास आया है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो का। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज दशरथ सेन, रानू सेन, देवद हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं सीतामऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, रघुवंशी नंदिनी रघुवंशी, आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से, कुमारी वंदना मराठा देवी का चौधरी, देविका चौधरी नाम है, देवी और का दोनों अलग अलग लिखे हैं इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाई, देविका चौधरी नाम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसे पहले कि मैं और मैसेजेस की तरफ जाऊं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। और यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे पास अपना ईमेल भेज देना है अपने नाम के साथ और अपने पसंदीदा गीत के साथ। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com यानी iprradiodelhi@gmail.com। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने श्रोताओं की तरफ जिनके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच चुके हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और मेंडी शर्मा का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे हमारा कार्यक्रम सुन रही है। साथ ही प्रयाग चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। प्रभुलिंग गुंजेती बीजापुर कर्नाटका से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ हम चलेंगे लेकिन पहले सुनते हैं ये आपकी फरमाइश का

0: तो क्या सौ
1: सौ तो नहीं पर
0: क्या
1: कम से कम हो तो
2: श्रोताओ ये गीत हमने लिया था फिल्म बदलते रिश्ते से, आवाजें किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल जी की। और इसी के साथ अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है सन्नी कंबोज जी का, जिन्होंने लिखा है मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं अपना काम पूरा करूं और रात में आराम से रेडियो का आनंद लूं, और जब हमारा नाम आ जाता है तो फिर क्या ही बात हो जाती है। रात के कार्यक्रम में जब आपका प्रोग्राम सुनता हूं तो मैं पुराने समय में चला जाता हूं, जिसमें बहुत आनंद आता है। इतना अच्छा कार्यक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव कल्याण मल्लका जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और मनिंदर जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां, ये नया दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से शेर के साथ। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी का है, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे जी ललिता खर्चे जी के साथ लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का, लड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आपने लिखा है जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए, क्या बात है। इसी के साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर राजकुमार जाजोरिया जी का, जो कि सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू के साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास कस्बा गुन्नौर यूपी से आया है, सुनने वाले हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे जी लगातार हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी का आया है, जो कि कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल के साथ हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास मनकाना मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से आया है, सुनने वाले श्रोता हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा भी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना जी आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास मैसेज आया है PTI संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं।

कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गुड इवनिंग के साथ हमारे पास मैसेज आया है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद भी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, इलीजा नायब और लड्डू भी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमें बहुत अच्छा लगता है जब लगातार आपके मैसेजेस आते हैं कि आप हमारा लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता जी, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे आपकी फरमाइश का ये एक और बहुत प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म बेटा बेटी से। आवाजें थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है दशरथ सेन, रानू सेन देवत, पता सीतामऊ रोड, नाटाराम, जिला मंदसौर से लिखते हैं। पहली बार ईमेल भेज रहे हैं और देखा हमने पहली बार आपका ईमेल शामिल कर लिया। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है श्रोता नजफगढ़ जय विहार से, शाहरुख फारूक शबनम शहनाज जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आते हैं जिसके कारण बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास बिना पढ़े ही रह जाते हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय तनुश्री गुप्ता, नन्ही मुन्हे अंबिका बेबी के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब हमारा कार्यक्रम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, रचना जी आपकी मधुर प्रस्तुति की तारीफ किन शब्दों में करें? आपने शब्दों में, जिन शब्दों में आपने तारीफ की है उन्हीं शब्दों में आप कर दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैसेजेस हमारे पास आए हैं जो कि श्रोता नजफगढ़ जय विहार से, शाहरुख फारूक शबनम शहनाज जी का है जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। दशरथ सेन, छोटे छोटे बच्चे हिमांशी सेन, गुरमीत सेन, सांची सेन और सेन परिवार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। बस स्टैंड नाटाराम, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक और आपकी फरमाइश का प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म बरसात से, आवाजें थी लता मंगेशकर की। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु का। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी हमारे कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल जी भी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास रह भी गए होंगे, लेकिन उन सभी श्रोताओं का जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं लेकिन जिनके मैसेजेस हम नहीं ले पाए, बहुत बहुत दुख के साथ हम अपने आखिरी गीत की तरफ चलते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का, आप सभी की पसंद का ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

श्रोताओ, गैम्बलर फिल्म के इस गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को आपके मन पसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पर समेटने की आज्ञा दीजिए। इस गीत के कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो वक्त के दायरे को लांघ जाती हैं, जो इतिहास की दीवारों पर अपने सुरों से ऐसी नक्काशी करती हैं कि सदियां भी उनके सामने सिर झुकाती हैं। आज का ये विशेष सफर उस आवाज के लिए है जिसने हिंदुस्तान को रोना, हंसना, प्यार करना और देश प्रेम की वेदी पर आंसू बहाना सिखाया। जी हाँ, हमारी और आपकी, हम सब की प्यारी सुरों की कोकिला लता मंगेशकर, जिन्हें सब प्यार से लता दीदी कहकर पुकारते हैं। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे उनके बचपन की, उनके कड़े संघर्ष की, उनके बेमिसाल करियर की और उनके अनगिनत सम्मानों की, जिन्होंने खुद लता जी के पास आकर अपना मान बढ़ाया। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं उसी जादुई गीत से जिसने लता जी को रातों रात भारतीय सिनेमा के सिंहासन पर बैठा दिया। फिल्म महल से मधुबाला पर फिल्माया खेमचंद प्रकाश का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज। आएगा आने वाला।

क्या बात है, इस गाने को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस आवाज को दुनिया ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और स्वर कोकिला कहा, उनका असली नाम लता नहीं था। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक बेहद सुसंस्कृत और संगीत प्रेमी परिवार में जब एक नन्ही परी ने जन्म लिया, तो माता पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर और श्रीवंती जी ने उनका नाम रखा था हेमा। लेकिन बाद में पंडित दीनानाथ जी ने एक नाटक भाव बंधन की एक किरदार लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। पिता खुद शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े उस्ताद और रंगमंच के कलाकार थे। संगीत तो लता दीदी के खून में था। एक बार की बात है, दीनानाथ जी अपने किसी शागिर्द को एक राग सिखाकर कहीं बाहर गए थे। पांच साल की नन्ही लता पास में ही खेल रही थी। शागिर्द ने गाते हुए एक सुर गलत लगा दिया। लता जी से रहा नहीं गया, वो दौड़ कर गई और उस शागिर्द को सही सुर गा कर सुनाया। जब दीनानाथ जी वापस लौटे तो उन्होंने पत्नी से कहा, हमारे घर में ही एक बहुत

फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। वो कहती थी, मुझे कैमरे के सामने सजना धजना और अभिनय करना कभी पसंद नहीं था, लेकिन परिवार के लिए वो करना पड़ा। आइए सुनते हैं उनके उसी दौर का एक बेहद खूबसूरत गीत जो आज भी दिलों को छू लेता है।

रेडियो सुनने वाले तमाम दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि संघर्ष की भट्टी में तपकर ही कोई सोना कुंदन बनता है। जब लता मंगेशकर मुंबई का रुख करती हैं तो राहें आसान नहीं थी उनकी जिंदगी में। उस दौर में शमशाद बेगम, अमीरा बाई कर्नाटकी और नूर जहां जैसी भारी और नशीली आवाजों का राज था। जब मास्टर विनायक और संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने लता जी को उस समय के बड़े फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया तो मुखर्जी साहब ने कहकर लता जी को रिजेक्ट कर दिया था कि इस लड़की की आवाज बहुत पतली है। सोचिए, जिसे आज दुनिया की सबसे सुरीली आवाज कहा जाता है उसे कभी पतली आवाज कहकर नकार दिया गया था, लेकिन गुलाम हैदर साहब को अपनी पारखी नजर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गरज कर कहा था, मुखर्जी साहब आज आप इन्हें मना कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा जब फिल्म मेकर्स इस लड़की के पैरों में गिरेंगे और अपनी फिल्मों में गाने की भीख मांगेंगे। और हैदर साहब की वो भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। लता मंगेशकर ने अपनी उर्दू के तलफ्फुज को सुधारने के लिए बाकायदा मौलाना से उर्दू सीखी ताकि उनके गीतों में कोई कमी ना निकाल सके। उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1949 में फिल्म महल के गाने ने वो तहलका मचाया कि ऑल इंडिया रेडियो के फोन बजने बंद नहीं होते थे। लोग दीवाने हो गए थे ये जानने के लिए कि आखिर इस जादुई आवाज के पीछे कौन है। चलिए दीदी के इसी सुनहरे सफर को आगे बढ़ाते हैं 1950 के दशक के कुछ ऐसे नगमों के साथ जिन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा की निर्विवाद रानी बना दिया।

दोस्तों, लता मंगेशकर का करियर जब परवान चढ़ा तो उन्होंने नौशाद साहब, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र और खय्यम जैसे दिग्गजों का के साथ काम किया। लेकिन एक संगीतकार ऐसे थे जिनके साथ उनका रिश्ता एक गायिका और कंपोजर से कहीं बढ़कर भाई बहन का था। वो थे मदन मोहन साहब। लता जी हमेशा कहती थी कि मदन मोहन जैसा गजल और धुनों का सरताज कोई दूसरा नहीं हुआ। उनके बीच ऐसा गहरा लगाव था कि जब भी मदन मोहन जी कोई धुन बनाते, वो कहते, ये तो सिर्फ मेरी लता ही गाएगी। एक बार की बात है, फिल्म जहान आरा का गाना वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं रिकॉर्ड हो रहा था। गाना इतना भावुक और मुश्किल था कि रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में सन्नाटा पसर गया था। लता जी ने जब आखिरी सुर लगाया तो मदन मोहन जी की आंखों में आंसू थे। वैसे इनके बारे में एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार संगीतकार नौशाद साहब के साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुंबई की भीषण गर्मी, स्टूडियो में एसी नहीं था और रिकॉर्डिंग की शुद्धता के लिए छत का पंखा भी बंद कर दिया गया था। लता जी घंटों से बिना रुके गा रही थी और अचानक वो गाते गाते बेहोश होकर गिर पड़ी। संगीत के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी तपस्या शायद ही किसी और में देखने को मिले। आइए सुनते हैं मदन मोहन के साथ लता जी का वो गीत जो आज भी हमारी रूह में बसता है।

लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद ही ऐसा कोई दिल होगा जो इस गाने को सुनकर धड़का ना हो। लेकिन दोस्तों, लता जी की आवाज में सिर्फ प्यार की कशिश नहीं थी, उनकी आवाज में वो ताकत थी जो पूरे देश की आंखों को एक साथ नम कर सकती थी। बात है साल 1963 की, भारत चीन युद्ध के ठीक बाद 27 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे। लता जी मंच पर आईं और उन्होंने कवि प्रदीप का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत गाना शुरू किया। गीत के बोल थे, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। जब दीदी ने अपनी पूरी रूह झोंक कर गाया, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें छलक उठी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, पंडित नेहरू ने लता जी को अपने पास बुलाया। उनकी आंखें भी भीगी हुई थी। नेहरू जी ने लता से कहा, बेटी आज तुमने मुझे रुला दिया। ये गाना सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया। आइए आज इस विशेष शो में हम सब मिलकर उस ऐतिहासिक पल को याद करते हैं और सुनते हैं ये अमर देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों जब कोई फनकार इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो पुरस्कार बहुत छोटे लगने लगते हैं। लता मंगेशकर को दुनिया भर में जो मान सम्मान मिला उसकी कोई मिसाल नहीं है। उन्हें भारत सरकार द्वारा साल 1969 में पद्म भूषण, 1989 में सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। और फिर आया साल 2001 जब इस देश ने अपनी इस लाडली बेटी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। लेकिन लता मंगेशकर की ख्याति सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं थी। साल 1974 में वो लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय पार्श्व गायिका बनी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरवशाली क्षण था। यही नहीं, साल 2007 में फ्रांस सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। एक समय तो ऐसा था जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में दर्ज किया गया था, जिन्होंने 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने पुरस्कारों के बावजूद लता जी की सादगी का क्या आलम था? वो कभी अपने गाए हुए गाने खुद नहीं सुनती थी। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने हंसकर कहा था, अगर मैं अपने गाने सुनूंगी तो मुझे उनमें 100 गलतियां नजर आएंगी और मैं परेशान हो जाऊंगी। आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ एक और गीत।

जी हाँ, जिस तरह आप झूम रहे हैं गीत सुनकर, उसी तरह हम भी स्टूडियो में रौनक लगा रहे हैं। और दीदी तेरा देवर दीवाना ये गीत 90 के दशक की हर शादी हर घर की रौनक था। ये गाना लता मंगेशकर ने नरगिस से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल से लेकर प्रीति जिंटा तक हर पीढ़ी की एक्ट्रेस को अपनी आवाज दी। वो उम्र के 8वें और 9वें दशक में भी वैसी ही ताजगी के साथ गाती रही। साल 2004 में जब वीर जारा फिल्म आई तो 75 वर्ष की उम्र में दीदी ने जो गाने गाए उन्हें सुनकर लगा ही नहीं कि वक्त कहीं बदला है। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक स्वाभिमानी महिला भी थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स को रॉयल्टी दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वो मानती थी कि गाने के पीछे की असली आत्मा गायक की होती है और उसका हक उसे मिलना ही चाहिए। उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में भी देश की सेवा की और इस दौरान उन्होंने कभी कोई सरकारी वेतन या भत्ता स्वीकार नहीं किया। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में सुरों की देवी हमसे भौतिक रूप से दूर चली गई। सबकी आंखें नम थी, लेकिन क्या लता जी हम कभी हमसे दूर जा सकती हैं? जब तक इस दुनिया में सुर रहेंगे, जब तक कोई आशिक अपनी महबूबा के लिए गुनगुनाएगा, जब तक कोई देशभक्त अपनी मातृभूमि को नमन करेगा, लता मंगेशकर हमारी सांसों से सांसों में हमारी धड़कनों में जिंदा रहेंगी। आइए सुनते हैं इनका गाया एक और गीत।

लता मंगेशकर जैसी गायिका हम सभी के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है और हम सब कहीं ना कहीं उनके जैसा बनने की सोचते हैं। पर लता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर उनका जन्म दोबारा होता है तो वे कुछ भी बनेंगी पर लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। दोस्तों, आज के इस सफर में हमने लता मंगेशकर के जीवन के अनगिनत रंगों को छुआ। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम से विदा लेने से पहले आपको छोड़े जा रही हूं लता जी के इस दार्शनिक और खूबसूरत वादे के साथ। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। और फिलहाल इस गीत को आनंद लीजिए।

0: इसी के साथ सुरंगा सफरनामा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि के एक बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य में लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्मार्ट डिजिटल गाइड के रूप में NZP साथी ऐप लॉन्च किया और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाकर चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security,

फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अब आइए सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफी का स्वर है और फिल्म हीर रांझा से अगला गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे, उन यादों को ताजा कर रहे हैं इन गीतों के जरिए। अगली आवाज मोहम्मद रफी की सुनवा रहे हैं आपको, आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

अब आइए सुनते हैं फिल्म प्यारा दुश्मन से रफीक सागर की आवाज में, संगीतकार बप्पी लहरी और बोल लिखे हैं कुलवंत जानी ने।

अभी आपने सुना इतना चुलबुला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत से पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आपको सुनवाते हैं अगली आवाज किशोर कुमार की।

अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए आ रहा है, जिसमें आप सुनेंगे आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी, भूपेंद्र व अन्य आवाजों में। ये गीत

राज की बातें सरे महफिल किसी से क्या कहें, सामने आ जाएगा सब, हम अभी से क्या कहें।

0: फिल्म जेल यात्रा से आप सुन रहे थे इस गीत को, आरडी बर्मन का संगीत था। इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय

संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। अनिर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरी।

0: इन गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि बस खो जाओ, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा। यहीं खत्म होता है नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और अब होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती

0: की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भूटान में आज देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान या जानमाल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोवोली को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फिलिप चैट्रियर कोर्ट पर खेले गए 4:20 के मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPMJAY in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. A high-level delegation from the European Union will arrive in Guwahati, Assam today for a two-day visit aimed at strengthening cooperation.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अच्छे।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक पर आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें आज आप सुनेंगे शीर गाजीज एस गोविंद राजन का रागम कल्याणी में गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026 सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरा वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज का विषय होगा अश्वथासन और तितली क्रिया। 5:20 पर आपके लिए लेकर आएंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे नितिन शर्मा का राग ललित में गायन।

इंद्रप्रस्थ पर सुबह 6:10 का वक्त होगा कार्यक्रम वंदना का, और जिसमें आप सुनेंगे भक्तिमय संगीत। 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, और 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 6:55 पर आपके लिए लेकर आएंगे संस्कृत में समाचार। 7:10 का वक्त होगा संगीतिका का,

0: हिंदी में समाचार और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आपके लिए होंगे उर्दू में समाचार और 8:45 पर स्वर गंगा में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। पंद्रह मिनट पर आज के लिए हमारी मेहमान कार्यक्रम में एक स्पेशल पेशकश होगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो की ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित है। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा।

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and culture domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge the significant advancements in bilateral relations have been made during this time. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the 3-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association CPA India region in Chandigarh today. The conference is being hosted by the Haryana Legislative Assembly. The event will be attended by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Nayab Singh Saini, Haryana Vidhan Sabha Speaker Harvinder Kalyan, presiding and deputy presiding officers from 15 legislatures across the country, as well as members of legislative assemblies. A high-level delegation from the European Union will arrive in Guwahati, Assam today for a 2-day visit aimed at strengthening cooperation with India's northeastern states. According to the EU, discussions will focus on sectors where Europe and the Northeast share common interest, including renewable and green energy, sustainable urban infrastructure, health and pharmaceuticals. The visit is a part of efforts to advance priorities outlined in the comprehensive strategic agenda agreed by India and the European Union at their summit in January. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi tomorrow. The Ministry of Home Affairs said the launch of LPMS will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation. West Bengal is set to become 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of APPMJAY in the state. The MOU will be signed in New Delhi in the presence of Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन सांस पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें, और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी

नई स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो

0: यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नितिन शर्मा का राग ललित में गायन।